संत न जाति हरता के पारावार आप कराए साक्षी प्राप्त कराए मां इकना गली चलीरिये के चुड़ी चढ़े बिसिया आप कराए करे आप ही कैसे करी पुकार नान करना जिन किया तो किसी करनी सा।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮਨੋਜ। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, SME, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेज़बानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत

0: नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, 100.9 मेगाहर्ट्स, ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। आओ हुण सुनिए खेतीबाड़ी प्रोग्राम।
1: खेतीबाड़ी

मारीच तथा सुबाहु सहित अन्य राक्षसों के उपद्रव से मुक्ति पाने के उद्देश्य से विश्वामित्र ने राजा दशरथ के सम्मुख उपस्थित हो राक्षसों के संहार के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्री रघुनाथ जी की याचना की। बोले, इनके द्वारा राक्षसों के वध होने पर वह निरापद हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर महाराज दशरथ के मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। वह मुनि के चरणों में धरती, गोधन, राजकोष, अपना सब कुछ अर्पित करने को प्रस्तुत थे, किंतु प्राणों से भी अधिक प्रिय राम को मुनि को देते किसी प्रकार नहीं बनता। ये सुकुमार किशोर भला किस प्रकार राक्षसों का सामना कर सकेंगे? तब गुरु वशिष्ठ ने अपने वचनों द्वारा राजा दशरथ का संदेह और अज्ञान दूर किया। राजा ने अपने दो पुत्र मुनि विश्वामित्र को सौंप दिए। पुरुष रूप में दो सिंह श्रीराम और लक्ष्मण मुनिजन के कष्ट हरने चले। श्याम और गौर वर्ण के दो परम सुंदर किशोरों के रूप में मुनिवर को जैसे दुर्लभ निधि प्राप्त हो गई हो। राह में ताड़का वध करते हुए दोनों भाई मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने ऐसी विद्या प्राप्त की जिससे भूख प्यास न लगे तथा शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, डीआरएम 864 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, 100.9 मेगाहर्ट्स, डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का ये जलंधर केंद्र है। 6:55 हो रहे हैं, कुछ पलों के इंतजार तो बाद तुसी संस्कृत विच समाचार सुनोगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथिनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथिनबर्ग इत्यत्र संप्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः संबंधेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारो भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारो व्यापार, निवेश, प्रविधि, नवाचार, हरित परिवर्तनम, अंतरिक्ष रक्षा, अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्री मोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेण वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादम विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमंत्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्री मोदी प्रकाशितवान्।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथिनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन अभियानं, स्वच्छोर्जा, अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्री मोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमंत्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्री मोदी तत्रत्य प्रधानमंत्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य

0: नेतृत्वे केरलं शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। काङ्ग्रेसदलस्य नेता वी डी सतीशन् अद्य तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। काङ्ग्रेसदलेन सतीशन् इत्यसौ केरलप्रदेशस्य अग्रिममुख्यमन्त्रीरूपेण समुद्घोषितः। काङ्ग्रेसदलस्य नेतृत्वयुतेन युनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रन्थियुतेन तत्र शासनविरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृहसहकारितामन्त्री अमितशाहः गुजरातप्रदेशस्य गान्धीनगरे 700 कोटिमितानां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गान्धीनगर नगरनिगमस्य 100 कोटिमितानां विकासकार्याणां शुभारम्भमपि श्रीशाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्रीशाहः सूचनाकेन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्रीशाहः AI तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडावार्तासु IPL इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 7 बज चुके ने, हुण तक दीआं मुख खबरां सुणो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशां दे दौरे दे तीजे पड़ा ते स्वीडन पहुंचे। नवीं ते नवियाउणयोग ऊर्जा बारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन विच रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मंग नूं सफलतापूर्वक पूरा किया है। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन की अगवाई वाली नवी केरलम सरकार अज तिरुवंतापुरम विच सौं चुकेगी। सरकार ने कहा है कि CBSE दियां 12वीं जमात दियां प्रीख्यावां विच ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली नाल मुलांकण विच पारदर्शिता ते निरपक्षता वधी है। ईरान ने ऐलान किया है कि वह फौजी साजो समान ले जाने वाले दुश्मन के जहाज़ों को हॉर्मोज जलमार्ग तो लंघन की इजाजत नहीं देगा। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट से चढ़ के इतिहास रच दिता है। गुरदासपुर हैंड ग्रेनेड मामले के संबंध में 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने सहकार भारती पंजाब जागरूकता संघ गोष्ठी में मुख मेहमान वजो शिरकत की। उन्होंने सहकारिता अंदोलन नूं पिंडां दे विकास ते समाजिक मजबूती दा अहम आधार करार दिता है। पंजाब विच 105 स्थानक संस्थावां लई चोणां 26 मई नूं, पर खरड़ दीआं चोणां मुलतवी करन संबंधी निर्देश जारी। ते IPL क्रिकेट विच धर्मशाला विच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पंजाब किंग्स नूं 23 दौड़ां दे नाल हरा दिता। इह सन हुण तक दीआं मुख खबरां। अगलियां मुख खबरां तुसीं सवेरे 9 बजे सुणोगे। आकाशवाणी जलंधर ते हुण प्रोग्राम सोहणी सवेर।

हो दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: ब्रेक तो बाद सोनी स्पेयर प्रोग्राम फिर तो हाजिर है जी। 7:46 होए ने, आकाशवाणी जलंधर तो तुसी साडा ये प्रोग्राम सुन रहे हो। अच्छा, तुसी नोटिस किया होना, महसूस किया होना कि आम तौर पर ना कोई बंदा अपने परिवार लिए काम करदा अक्सर ये उम्मीद करता है कि वह परिवार वह सत्कार करे। जिहड़े घर के बच्चे ने वो इस गल ते एहसान मनन कि उन्होंने पिता साढ़े लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। पर ना जी, साढ़े समाज में कुछ शख्स इदा के ने जो सिर्फ अपने परिवार लिए नहीं, अपने जिले, अपने सूबे, अपने देश लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं। तो कदे भी इस गल की उम्मीद नहीं रखते कि लोग उन्हों का एहसान मनन। दरअसल मैं सेहत विज्ञानियों की गल कर रहा। सेहत विज्ञानी जो साड़ियाँ बीमारियों दूर करने लई दवाइया की वैक्सीन की खोज करते हैं ताकि पूरी दुनिया के जेडे रोग ने वह दूर हो सकन। तो यह जी खोज है जदों भी की जाती है ये पूरे संसार को फायदा देती है, संसार के हर बंदे फायदा देती है। अज का जोड़ा 18 मई का दिन है ना जी, ये विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के तौर पर मनाया जा रहा। अज के दिन का मकसद ये है कि वह विज्ञानी, वह हज़ारों विज्ञानी जो दिन रात एक करके एड्स की वैक्सीन की खोज कर रहे हैं ताकि इस बीमारी को जड़ तो खत्म किया जा सके, आप उन्हां विज्ञानियों नूं सलाम कर रहे हैं, उन्हां नूं हौसला दे रहे हैं, उन्हां दी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल अज के दिन की जिहड़ी शुरुआत है ना जी, इहदी प्रेरणा उस वेले दे अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन होरां तों मिली सी। साल 1997 उन्होंने अपने एक भाषण विच कहा सी कि मैं उम्मीद करदा कि अगले दहाके विच एड्स के खात्मे लई वैक्सीन तैयार की जाए। हुण आपां सारे जाणदे हां कि एड्स एक इदां दी अजिही गंभीर बीमारी है जो मनुख दे इम्यून सिस्टम नूं पूरी तरह दे नाल कमज़ोर कर देंदी है।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 8:40 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। 10:02 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਫੋਨ ਇਨ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੁਣੋਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ 0181 23 42 173। 11:05 ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ 94-655-36-077। ਇਹ ਮੈਸੇਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 10:30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੋਥੇਨਬਰਗ ਮੇਂ ਸਵੀਡਨ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਲਫ ਕ੍ਰਿਸਟਰਸਨ ਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤਚੀਤ ਕੀ। ਭਾਰਤ ਔਰ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੋ ਬੜਾਕਰ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਤੱਕ ਕਰਨੇ ਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਕੀ ਕੰਪਨੀਓ ਕੋ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਜੈਸੀ ਯੋਜਨਾਓ ਕੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੜਾਨੇ ਕਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿਆ। ਕੇਰਲਮ ਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਵੀ ਡੀ ਸਤੀਸ਼ਨ ਆਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਕੀ ਸ਼ਪਥ ਲੇਂਗੇ। ਦਕਸ਼ਿਣ ਪੱਛਮ ਮੌਨਸੂਨ ਕੇ ਸਾਮਾਨਿਆ ਤਿਥੀ ਸੇ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 26 ਮਈ ਕੋ ਕੇਰਲਮ ਤਟ ਪਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਔਰ ਆਈ ਪੀ ਐਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੇਂ ਡੈਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਕੋ 5 ਸੇ ਹਰਾਇਆ। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
2: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
3: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का

0: आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
6: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई

0: को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
1: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। हॉर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। NDA सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृह मंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृह मंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और NDA की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी।

0: Times. While the Times of India states, drone attack sparks fire at UAE nuclear plant. In an editorial titled Diversification Gains, the Hindu commends India's export performance in April 2026, underscoring the attempts by the government and industry to diversify in terms of crisis. And finally, the Indian Express writes, HPV vaccination sees uptick, 1,100 girls receiving the shot. The figure reflects a slow but steadily accelerating start to one of the country's most important public health drives in recent years in preventing cervical cancer. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथनबर्ग विच स्वीडन दे प्रधानमंत्री ओल्फ क्रिस्टरसन नाल गलबात कीती। भारत अते स्वीडन ने आपसी सहयोग नूं व्यापक रणनीतिक भाईवाली तक वधाउण दा फैसला कीता है। प्रधानमंत्री ने स्वीडन दीआं कंपनीआं नूं भारत विच निवेश वधाउण दा सद्दा दित्ता है। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन अज केरलम दे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकणगे। दक्षण पछमी मानसून के आम नालों 6 दिन पहला 26 मई को केरलम पहुंचने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकटों से हरा दिया है। खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात गोथनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री ओल्फ क्रिस्टरसन गलबात की। श्री मोदी कल स्वीडन के 2 दिनों दौरे पर गोथनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री ने दोहां देशों विचकार दवले संबंधों में शानदार योगदान और उनकी दूरदर्शी अगवाई लई स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस नाल सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किसी देश के मुखी नूं दिता जाण वाला सब तो वड्डा सम्मान है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 31वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। वफद पदरी गलबात दौरान दोहां आगुआं ने भारत स्वीडन संबंधों के समुचे पहलुओं की समीक्षा की। वह दवले संबंधों नूं रणनीतिक भाईवाली तक वधाउण लई सहमत होए। उन्हां व्यापार ते निवेश तकनोलॉजी ते नवीनता पुलाड़ उभर दीआं तकनोलॉजियां रक्षा ते सुरक्षा छोटे अते दरमियाने उद्यमां खोज अते लोकां दरमियान संबंधों नूं मजबूत करन बारे भी चर्चा की। दोहां नेतावां ने खेतरी ते अंतरराष्ट्रीय मुद्दिआं ते भी विचार वटांदरा कीता। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र ते बहुपक्षी संगठनां विच सुधार की लोड़ पर जोर दिता ते बहुपक्षी मंचां विच सहयोग वधाउण लई सहमत होए। प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने डिजिटल तब्दीली ते आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के खेत्र विच भारत की प्रगति की शलाघा की। उन्होंने स्वीडन विच भारतीय भाईचारे के उसारू योगदान की भी प्रशंसा की। गोथनबर्ग पहुंचन ते श्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों नाल मुलाकात की। भारतीय प्रवासियों ने संगीतक पेशकारियों नाल श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथनबर्ग में चुनिंदा स्वीडिश कंपनियों के सीईओज नाल गलबात दौरान कंपनियों नूं निर्माण ग्रीन हाइड्रोजन मिशन साफ सुथरी ऊर्जा ते होर खेतरां विच भारत विच अपनी मौजूदगी वधाउण की अपील की। भारत ते स्वीडन दीआं लोकतंत्र पारदर्शिता नवीनता ते स्थिरता दीआं सांझीआं कदरां कीमतां ते जोर दिंदिआं श्री मोदी ने स्वीडन दीआं नवीनता ते स्थिरता समर्थावां नूं भारत दे विशाल आकार प्रतिभा अते विकास की गति नाल जोड़न दा सद्दा दित्ता। भारत की तेज़ आर्थिक तब्दीली नूं उजागर करदिआं श्री मोदी ने भारत की मजबूत घरेलू मंग डिजिटल जनतक बुनियादी ढांचा निर्माण विस्तार ते अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के विकास का जिक्र किया। भारत स्वीडन संबंधों बारे श्री मोदी ने कहा कि दोवें देश खरीददार विक्रेता संबंधों तो उपर लंबे समय की उद्योगिक साझेदारी विकसित करने लई काम कर रहे ने।
3: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का

0: प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों ते सीईओस ने भारत में डूंगी दिलचस्पी दिखाई है ते पिछले कई सालों में निरंतर आर्थिक सुधारों कारण देश में हुए बदलाव की शलाघा की है। यूरोपियन उद्योगपतियों की गोलमेज मीटिंग तो बाद पत्रकारों नाल गलबात करदिआं विदेश मंत्रालय में पछमी मामलों के सकत्र सीबी जॉर्ज ने कहा कि सीईओस अते मुख उद्योगपतियों ने हाल ही के सालों में भारत में हुए महत्वपूर्ण बदलाव का जिक्र किया। श्री जॉर्ज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने रविंद्रनाथ टैगोर की सांझी सभ्याचारक विरासत को दर्शाते विशेष तोहफे का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के चौथे पड़ाव अज नॉर्वे पहुंचणगे। यह प्रधानमंत्री मोदी का नॉर्वे का पहला दौरा होगा। वो 43 साल में नॉर्वे का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। दौरे दौरान श्री मोदी तीजे भारत नॉर्डिक सम्मेलन और दुवलिया मीटिंगों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के किंग हैराल्ड पंजवें और राणी सोनजा नाल मुलाकात करेंगे ते प्रधानमंत्री जॉन्स गारस्टोर नाल दवली गलबात करेंगे। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री नाल भारत नॉर्डिक व्यापार और खोज शिखर सम्मेलन को भी संबोधन करेंगे। शिखर सम्मेलन दौरान भारत नॉर्डिक संबंधों में प्रगति की समीक्षा की जाएगी। ये खबर तुम आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR RNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब से साडा चैनल है @AIR जलंधर। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन अज केरलम के मुख्यमंत्री वजन सहुं चुकणगे। राज के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर अज सवेरे 10 बजे तिरुवंतपुरम में एक समारोह में उन्होंने अहुदे और राजदारी की सहुं चुकाएंगे। मुख्यमंत्री वजो नामजद सतीशन ने कल शाम 21 मैंबरी UDF कैबिनेट का ऐलान किया। 10 साल के वक्फे तो बाद केरलम में कांग्रेस की अगवाई वाली UDF सरकार सत्ता च वापस आ रही है। मुख्यमंत्री और 20 होर मंत्री तिरुवंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में होने वाले एक समारोह में सहुं चुकणगे। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन समेत नवी सरकार के 16 मैंबर पहली बार मंत्री बन रहे हैं। सहुं चुक समागम च कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विरोधी धिर के नेता राहुल गांधी, करनाटका, हिमाचल प्रदेश के तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों, अहुदे तो हट रहे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और BJP के सूबा प्रधान राजीव चंद्रशेखर समेत कई सीनियर आगुआ के शामिल होने की उम्मीद है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिन दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। दौरे दौरान श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। नीट UG दाखिला प्रीख्या प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच हुण महाराष्ट्र के लातूर तो नांदेड़ तक फैल गई है। एक पिता से दोष है कि उसने अपनी धी लई लीक होए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदया सी। केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक टीम ने कल उस व्यक्ति तो पूछगिछ की और उसको होर जांच लई एजेंसी के पुणे दफ्तर में पेश होने लई बुलाया। इस मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने पुणे की मनीषा मंडारे 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिता है। एजेंसी अनुसार मंडारे नीट का जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में मुख्य साजिशकर्ता सी। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व सेहत असैंबली में शामिल होने लई स्विट्जरलैंड पहुंच गए ने। 6 दिन सम्मेलन अज जनेवा में शुरू होगा। यह सम्मेलन मजबूत वधेरे समावेशी और अनुकूल सेहत प्रणालियों के निर्माण लई सांझी विश्वव्यापी वचनबद्धता की पुष्टि करेगा। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षण पश्चिमी मानसून के 26 मई में केरलम पहुंचने की संभावना है जो कि आम तरीक 1 जून तो 6 दिन पहला है। साढ़े पत्रकार ने खबर दी है कि दक्षण पश्चिमी मानसून के अगले 2 तो 3 दिन में दक्षण पूर्वी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडेमान टापू और अंडेमान सागर के होर हिस्सों तक पहुंचने लिए हालात अनुकूल ने। इस दौरान मौसम विभाग ने अज पछमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त लू की पेशीनगोई की है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी अज कुछ थावां ते लू चलने की संभावना है। IPL क्रिकेट में बीती रात दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकटों नाल हरा के प्लेऑफ च पहुंचने दी अपनी उम्मीदों बरकरार रखी है। राजस्थान रॉयल्स वालों दिए गए 194 दौड़ों के टीचे के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर से 2 गेंदों में 5 विकटों से 197 दौड़ा बना के मैच जीत लिया। पहला बल्लेबाजी करदे राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकटों से 193 दौड़ा बनाईया। कल एक होर मैच में धर्मशाला

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर

शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना च अज तुसी बेगम प्रवीण सुल्ताना ते पंडित जगदीश प्रसाद दा गायन सुनिया। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं, मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते। आओ हुण सुनिए NCERT वालों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
3: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
3: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
3: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
3: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
3: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: और करसोग

0: जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर,
1: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
0: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
1: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
0: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए, बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
1: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली व्हेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
0: जी,
1: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
1: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
0: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है?
1: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
0: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं?
1: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
0: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: Hello children, how are you?
3: We are fine, sir.
4: I am fine.
5: I am good, sir.
2: Fine, good. Okay, so tell me, what do you like most?
6: I like playing, sir.
7: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
10: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
3: Yes, sir. We like it.
2: That's very nice, children.
11: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it? The rivers, the mountains, and the green trees.
3: Yes, sir.
2: Okay, so let me tell you the story of a sweet child like you.
3: Like us?
2: Would you like to listen?
3: Yes, sir.
12: We love to listen the story.
2: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
3: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me, okay?
3: Okay, sir.
12: We love to recite it.
2: As I lie on my back,

0: नंगे पांव धोतीनुमा पारंपरिक कपड़े आदिवासी गहने पहनी
1: तुलसी गौड़ा 72 ईयर ओल्ड ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका
2: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती
3: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा
0: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
4: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
5: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
6: श्रीमती तुलसी गौड़ा समाज सेवा पर्यावरण।
5: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
7: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।

0: दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
1: अच्छा,
0: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए। हाँ।
1: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
0: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
1: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
0: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
0: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
1: अच्छा,
0: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
1: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
0: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
1: बिल्कुल होता है।
0: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
1: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
0: है ना?
1: जी।
0: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठा

0: वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
1: आइए जानते हैं कि मातृवृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है, वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
2: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृवृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृवृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
0: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृवृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
2: अच्छा।
0: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
2: अच्छा।
0: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
2: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृवृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृवृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
2: अच्छा।
0: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
2: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
0: इतना ही नहीं, यदि कई मातृवृक्ष आसपास हों, तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं। समझे?
2: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृवृक्षों के बारे में।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
2: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद।
1: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाहिला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुमलता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 88

0: शून्य शून्य चार चार शून्य पाँच पाँच नौ। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: तुसी NCERT वालों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग सुन रहे सी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 10 बज चुके ने, हुण तक दीआं मुख खबरां सुनो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग विच स्वीडन दे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन नाल गलबात कीती। भारत ते स्वीडन ने आपसी सहयोग नूं व्यापक रणनीतिक भाईवाली तक वधाउण दा फैसला कीता है। प्रधानमंत्री ने स्वीडन दीआं कंपनियां नूं भारत विच निवेश वधाउण दा सद्दा दित्ता। श्री मोदी अपने पांच देशों के दौरे के चौथे पड़ाव विच अज नॉर्वे पहुंचणगे। कांग्रेस नेता VD सथीसन अज केरलम दे मुख्यमंत्री वजों सहु चुकणगे। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व सेहत असैंबली विच शामिल होण लई स्विट्जरलैंड पहुंच गए ने। पंजाब विच 26 मई नूं होण वालियां नगर निगम चोणां नूं सुतंत्र निरपक्ष ते शांतिपूर्ण ढंग नाल नेपरे चाढ़न लई सूबे दे 23 जिलों विच IAS ते सीनियर PCS अधिकारियों नूं निगरान नियुक्त किया गया। गैंगस्टरां दे वॉर मुहिम दे 116वें दिन कल पंजाब पुलिस ने सूबे भर विच 598 थावां ते छापेमारी दौरान 315 व्यक्तियों नूं गिरफ्तार किया। दक्षण पछमी मानसून दे आम नालों 6 दिन पहलां 6 मई नूं केरलम पहुंचण दी संभावना। IPL क्रिकेट विच दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स नूं 5 विकटां दे नाल हरा दित्ता है। ते भारत ने गांधीनगर विच एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 विच 1 चांदी दे ते 9 कांसे दे तमगियां समेत कुल 10 तमगे जीते ने। इस सन हुण तक दीआं मुख खबरां। 10:02 ते 45 सैकेंड होए ने जी। आकाशवाणी जलंधर ते हुण पेश है लाइव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम हैलो फरमाइश। इस प्रोग्राम च तुसीं फोन करके अपनी पसंद दे फिल्मी गीत सुनते हो। सो डायल करो साडा नंबर 0181-23-42-173 ते फोन करके सानू दसो किहड़ा फिल्मी गीत तुसीं सुनना चाहुंदे हो। अज दा इह प्रोग्राम तुहाडी सेवा च लैके तुहाडा दोस्त वीरेंद्र हाजिर है।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ।
2: ਯੋਜਨਾ ਉਨ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਆਪ ਜਬ 60 ਸਾਲ ਕੇ ਹੋਂਗੇ ਆਪਕੋ ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਹਾਰੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੜੇ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਗੌਰਵ ਕੇ ਸਾਥ ਬਿਤਾ ਸਕੋ।
1: ਹੁਣ ਤੱਕ 8,85,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ

ए गोरा, सुना क्या लड़की बोला? हाँ, बात में बहुत दम है। छाती ठोक ठोक के बोला।

0: സതീശൻ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और आईयूएमएल नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। तिरुवनंतपुरम में 21 सदस्यीय सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जारी है। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। श्री मोदी की ये नॉर्वे की पहली यात्रा है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को गहरा करना, रक्षा औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत करना, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज सुबह एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब ट्रक की टक्कर सामने से आ रही वैन से हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य सहित 10 पदक जीते हैं। जियांगशान में 6ठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। तेल की बढ़ती कीमतों में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद वैश्विक बाजार के कमजोर रुझानों के चलते घरेलू शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियावेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। दिन दे 11:05 वज रहे ने ते समा हो रहा है प्रोग्राम पेश करन दा तमक जलंधर पेंदी जी। दोस्तों, इस प्रोग्राम विच तुसी सुनदे हो अपने मनपसंद गीत फरमाइशां करके सानू व्हाट्सएप दे जरिए। सो व्हाट्सएप करन वास्ते पहला ते नंबर नोट करो 9465

5 3 6 0 7 7 यानी कि 9465536077 ते करना की है इस नंबर नू डायल करके व्हाट्सएप ते जाके तुसी सानू डिटेल भेजो। वो केड़ी डिटेल है? अपना नाम भेजो, अपने शहर का नाम भेजो, अपने साथियों का या परिवारिक मैंबरों का नाम भेजो जो गीत नू सुनना चाहते थे। ते हाँ, नाल दे नाल गीत दे बोल भी टाइप करके भेजो जेड़े गीत नू तुसी सानू सुन के फरमाइश करना चाह रहे हो। ते नाल दे नाल एक चीज़ होर दस दिए कि जेकर तुसी अपने मनपसंद गायक कलर दे गाए हुए गीत भी सुनना चाहते हो, उन्हां दा नाम भी सानू टाइप करके पूरी डिटेल इस नंबर ते भेजो। सो दोस्तों, मैं थोड़ी दोस्त वीनस हाजिर हाँ अज इस प्रोग्राम विच तुहाड़ियां फरमाइशां तुहाड़े तक पहुँचाने लई। सो प्रोग्राम दा शुरुआती गीत सुनवाउण जा रही हाँ सुखचिंदर शिंदा दी आवाज़ विच। ते इस दरम्यान मैनू पता है कि बहुत सारियां फरमाइशां साढ़े तक पहुँच जाणगियां, ते फिर असीं वारो वार तुहाड़ियां फरमाइशां तुहाडे तक पहुँचाउण दा सिलसिला शुरू करांगे। सो आओ सुनदे हां पहला प्रोग्राम दे विच एक गीत सुखचिंदर शिंदा दी आवाज़ विच।

आज तातनी जा मोहित मकर महा किरण जी मनजीत जी ते पूजा ये भी फरमाइश कर रहे ने हंस राज हंस दे गाए हुए गीत नूं सुनन दी ते अगे फरमाइश कर रहे ने हंस राज हंस दे गाए हुए गीत नूं सुनन दी नरिंदर चावला पिंड मुखरौनपुर तहसील बस्सी पठाना डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब तो हरीश प्रिंस मुस्कान प्राची महक दमनजीत ते पुनीश भी इसे ही गीत नूं सुनन दी फरमाइश कर रहे ने अगली फरमाइश सानूं आई है जी गुंडवारा तो भेजन वाले ने शमसुल कमर राही शाहीना बेगम फातिमा अदनान खान फैजल खान अनु खान उस्मान अंसारी ते कलीम अंसारी अगली फरमाइश सानू आई है जी जलालाबाद पछमी तो ते फरमाइश भेजन वाले ने सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी ते नमित आहूजा सो इन सब की फरमाइश पूरी करदे हैं ते आओ सुनदे हैं हंसराज हंस की आवाज़ विच ए गीत

0: जी प्रोग्राम चल रहा तमक जलंधर पेंदी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बाकी दे गीत बाकी दे फरमाइशां इस छोटे जे अंतराल तो बाद जुड़े रहो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र दे नाल क्योंकि प्रोग्राम चल रहा तुहाडा मनपसंद तमक जलंधर पेंदी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक।

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਵੀਨਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर

0: ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर वे उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन आज से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 74,917, जबकि निफ्टी 113 अंक लुढ़क कर 23,530 पर था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वस्ते विड़े।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 1 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री

0: मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 1:05 वज रहे ने। आओ हुण तुहानू साढ़े दिन विच प्रसारित किए जाण वाले बाकी दे रहिंदे प्रोग्राम्स ते उन्हां दा प्रसारण समां दस दईए।

शाम 7:40 ते विविधा दे तहत काजल मेहरा द्वारा कविता पाठ सुनाया जाएगा ते इस तो बाद कुछ गजलां सुनवाईयां जानगियां।

ये तो कमाल हो गया। इस फिल्म का गीत तुसी सुन रहे सी SP बाला सुब्रमण्यम दी आवाज विच ते नाल आवाज दा साथ दे रहे सन आशा भोसले। आओ सुनदे आं प्रोग्राम दा अगला गीत।

0: लता मंगेशकर ते किशोर कुमार दी आवाज़ां विच तुसी सुन रहे सी रॉकी फिल्म चों लिया गया गीत। फौजी वीरो तुसी सुन रहे प्रोग्राम फौजी वीरां लई आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों। बाकी दे गीत तुसी सुनोगे इस छोटे जे अंतराल तों बाद।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: ते सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: निहाल मर्चा लोकी कहिंदे आ भगवान रेडियो हाले भी जवान है मैं भी किदां दियां गल्लां करदियां किसी ने सुन लिया उन्होंने कहना भूआ कि शैतान है।
1: 90 सालां दा सोहना सफर आकाश

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं, जहां वो नॉर्वे के अपने हमनसब योनास गहर स्टोरे के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि स्वीडन के उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। दोनों मुल्कों ने अगले 5 साल में दोतरफा तजारत दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। कांग्रेस के लीडर वीडी सतीशन को केरलम के वज़ीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया है। 20 काबीना वज़ीरों ने भी हलफ लिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में इमरजेंसी की सूरत हाल में काम करने वाली 400 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मेज़बान चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइज़र्स हैदराबाद से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी स्वीडन का 2 दिन का दौरा मुकम्मल करने के बाद अब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं। उनके इस दौरे में भारत और नॉर्वे के दरमियान बाहमी बातचीत होगी, साथ ही तीसरी भारत नॉर्डिक सरबराह मीटिंग में भी वो शिरकत करेंगे। जनाब मोदी के इस दौरे से नॉर्डिक मुल्कों के साथ भारत के ताल्लुकात को तकवीत मिलेगी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नॉर्वे के अपने पहले दौरे पर ओस्लो पहुंच गए हैं। पिछले 43 बरस में भारत के किसी भी वज़ीर आज़म का नॉर्वे का पहला दौरा है। जनाब मोदी आज नॉर्वे के शाह हारल्ड पंजुम और मलका सोंजना से मुलाकात करेंगे। नॉर्वे के वज़ीर आज़म योनास गहर स्टोरेस के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वो भारत नॉर्वे कारोबारी और तहकीकी समिट से भी खिताब करेंगे। इस दौरे में माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजी और समुद्री मीशत जैसे शुबों पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसके अलावा तजारत सरमाकारी के मौाक़े को भी फ़रोग हासिल होने की तवक्को है। कल वज़ीर आज़म तीसरी भारत नॉर्डिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। हाल ही में नाफिज किए गए तजारती

0: शराकत दारी माहदे के तनाजुर में तवक्को की जा रही है कि सरबरा कॉन्फ्रेंस रुकन मुल्कों के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहक करने में मददगार साबित होगी। सरहद भारत और 5 नॉर्डिक ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत 19 अरब डॉलर मालियत की है। नॉर्वे के ओसलो से संगीता गोडबुले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि स्वीडन के उनके दौरे में ऐसे कई अहम नतायज सामने आए हैं जिनसे बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि बाहमी ताल्लुकात को कलीदी साझेदारी की सतह तक पहुंचाने से लेकर मुश्तरका इख्तराई साझेदारी के दूसरे मरहले के आगाज़ और भारत स्वीडन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत कॉरिडोर से लेकर अगले 5 साल में दो तरफा तजारत को दोगुना करने का बड़ा मकसद तय करना उनके दौरे की के खास निकात रहे और बातचीत काफ़ी मुफीद साबित हुई। जनाब मोदी ने स्वीडन के आवाम, वहां की सरकार और वजीर आजम उल्फ क्रिस्टर्सन का गर्मजोशी और दोस्ती के लिए शुक्रिया अदा किया। हमारे नामनिगार ने बताया है कि बाहमी ताल्लुकात को कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचाने में 2026 से 2030 तक के भारत स्वीडन मुश्तरका अमली मंसूबे का अहम रोल रहा। जामे खाके का मकसद अगले 5 साल में दो तरफा इक्तिसादी लेन देन को दोगुना करना और मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि भारत आज सरमायाकारी इख्तिरा और मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया के सबसे पुरकशिश मुल्कों में से एक है। जनाब मोदी स्वीडन के अपने 2 दिन के दौरे में गोतनबर्ग में सनअत से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि मुल्क में सभी कंपनियों के लिए अच्छे मौके दस्तियाब हैं। साथ ही उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले बरसों में भारत के सरकर्दा प्रोजेक्टों का हिस्सा बनने के लिए उनके वास्ते एक इदारा जाती निज़ाम समेत मुख्तलिफ इकदाम भी किए जा सकते हैं। अपने खिताब में जनाब मोदी ने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तजारत के तारीखी समझौते के मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल होने समेत भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात में तेजी आने का खैर मकदम किया। केरलम में कांग्रेस के सरकर्दा लीडर वीडी सतीशन की सरबराही में नई यूडीएफ वजारत को आज तिरुवनंतपुरम में हलफ दिलाया गया। रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नए वजीरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। साबिक अपोजिशन लीडर और केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के साबिक सदर रमेश चिन्नीथाला, केपीसीसी के मौजूदा सदर सनी जोसेफ, केपीसीसी के साबिक सदर के मुरलीधरन और आईयूएमएल के लीडर पीके कुनाहली कुट्टी नई वजारत में सरकर्दा रहनुमाओं में शामिल हैं। मजमूई तौर पर 21 अरकान को हलफ दिलाया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने पर वीडी सतीशन को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार अवाम की उमंगों की तकमील में केरलम की नई तश्कील शुदा सरकार की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाएगी। मगरबी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की जेर क्यादत बीजेपी सरकार ने एक अहम फैसला करते हुए रियासती सरकार की मुलाजमत में आने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में इजाफा कर दिया है। ग्रुप ए असामियों में भर्ती के लिए उम्र की हद अब 41 साल तय की गई है, जबकि ग्रुप बी के ओहदों के लिए इसे बढ़ाकर 44 साल कर दिया गया है। ग्रुप सी और ग्रुप डी असामियों के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र अब 45 साल होगी। सरकार ने यह वजाहत की है कि जहां कहीं उम्र की बालाई हद पहले ही नाफिज है वहां मौजूदा जाब्ते बरकरार रहेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज रायपुर में अगले सिलसिले की 400 डायल 112 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वजीर आला विष्णुदेव साई, रियासती असम्बली के स्पीकर रमन सिंह और नायब वजीर आला विजय शर्मा भी मौजूद थे। अब तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में डायल 112 की खिदमत दस्तियाब थी। प्रोग्राम के बाद जनाब शाह बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वो नेतानार गांव में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप के अहाते में कायम करदा सरकारी खिदमात के मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये मरकज दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार और डिजिटल खिदमात तक आसानी से रसाई हासिल करने में मदद फराहम करेगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खेरी जिले में आज सुबह एक सड़क हादसे में कम 9 अफराद की मौत हो गई। मालूम हुआ है कि एक तेज रफ्तार ट्रक सामने से आने वाली एक गाड़ी से टकरा गया। इस गाड़ी में 2 खवातीन समेत 10 अफराद सफर कर रहे थे। صدر جمہوریہ دروپدی

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3:15 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले।

0: हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
1: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आई। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता PK कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के

0: माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला

0: आकाशवाणी समाचार रायपुर।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडिया वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे टाइम अच रहे ने आओ सुनते हैं प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस प्रोग्राम च तुसी रंजना दे गाए हुए कुछ लोक गीत सुनोगे।

वाह जी वाह, किन्ना खूबसूरत गीत गाया जी लखविंदर वडाली साहब ने। किसी ने बहुत ही खूब लिखे लिखे है, अखियां ने उड़ीकां च राह जो तकिया, अखियां ने उड़ीकां च राह जो तकिया, अखियां दी नींद रात खो के लैगी। अखियां जो दीद कीती तेरी सजना, अखियां जो दीद कीती तेरी सजना, तैनू तकने दी अखियां नू आदत पैगी, तैनू तकने दी अखियां नू आदत पैगी। हुण तुसीं सोच रहे होगे कि मैं अखियां ते इन्ना क ज़्यादा जोर क्यों पा रही हाँ जी, मेरियां अखां हो गईयां कमज़ोर, दिसदा नहीं मैनू। ते लो जी, तो चलो मजाक है तुहाडे नाल, इंज हुंदा हो रहा ना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पै रही है, ते गर्मियां च आपां अपनी अखां दा वी ख्याल रखना। हर कोई कह रहा जी तुहाडी स्किन यानी कि चमड़ी जो है फेस दी या तुहाडी बॉडी दी जो स्किन है बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, ये हो गया वो हो गया, किसी ने अखियां की गल की है। चलो खैर, साढ़े कोल गीत संगीत भी बहुत ज़्यादा है इस दे करके, ते पर दसना भी बहुत ज़्यादा जरूरी क्योंकि गर्मियों में तेज़ धुप यूवी किरणा अते गर्म हवावां कारण अखां विच खुशकी जलन एलर्जी अते इनफेक्शन हो सकती है। तो अपनी अखां की सुरक्षा लई 100% यूवी रोधक धुप वाली ऐनक यानी कि सन ग्लासिस जो है पाओ, तो हाइड्रेट रहन दे लई भरपूर पानी पियो, अखां नू वार वार जो है रगड़न तो बचो। तो जिस दे करके जे तुसी बार बार अपनी अखां नू रगड़ोगे ना, तो वो जो अखां की स्वैलिंग है लालीपन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बैटर है कि जे तुहाड़ी अखां च जलन या खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है तो

टाइम जो है सानू खत लिखिया है, बहुत ही वधिया लगता है कि जद कोई नवा दोस्त इस प्रोग्राम दे नाल जुड़ जाता है। तो लो जी हुण सुना रहे जी रोशन प्रिंस ते जस्सी गिल दी आवाज़ विच प्यारा जो गीत है, सुनदे हां। तुसीं सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

वाजिबा खूबसूरत गीत मन्नत नूर दी आवाज विच। ते लो जी चिट्ठियां पढ़ लैने आ। लिख रहे ने जिला फजलका तो जगतार गिल, गुरमीत, नाजम गिल, सुखमन, कमलदीप ते नाल इना दे एस के शर्मा ते जगतार टेलर। मको फिरोजपुर तो बिला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मुनीश बजाज। श्री फतेहगढ़ साहिब तो लिख रहे ने रामनाथ, सुखमनजीत ते नाल इन्हां दे सहजप्रीत कौर। जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह पाटिया, इंजन नवनीत ते पप्पी पाटिया। फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांदा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत ते मनविंदर सिंह पांदा। कोई भी गीत सुनना चाहते ने। मॉडल टाउन करनाल तो सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, ईशप्रीत शर्मा, विपेशा शर्मा ते सारे साथी। तला जी हो गए जी खातां दी गल। ते हुण जिन्हां जिन्हां ने कॉन्टैक्ट लैंस लाए होंदे ने उन्हां दे लई ये दसना बहुत जरूरी है कि जेकर तुसीं कॉन्टैक्ट लैंस पाउंदे हो तां उन्हां दी सफाई दा पूरा ध्यान रखना पैंदा है। ते जे तुसीं स्विमिंग करदे हो यानी कि तैराकी करदे समय भी तुहानूं लैंस जो है वह ला देने चाहिए ने। ये ना हो कि स्विमिंग करते करते अखों से तुहानूं दिसना ही बंद हो जाए यानी कि तुहाडे जो लैंस ने वो रुड़ ना जाण किते ते तुसी अन्नियां वांग जो है स्विमिंग करो। ये आपां नहीं चाहते हाँ, पर हाँ अखां खोल के मैं गीत कढ रही हाँ। बहुत ही प्यारे प्यारे गीत ने ते किहड़ा सुनावां ते सुना रहे हैं जी आरिफ लोहार की आवाज़ विच गीत है। सुनदे हां, तुसी सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

मोहब्बत होवे जां कोई सट होवे या पुरानी याद ही क्यों ना होवे, जिस तनु लगती है वो ही जानता है ना। सच्ची क्या है इस गीत विच। ते लो जी, सच कहन जा रही हाँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही कि तुहाडा खत पहुँच चुके हैं। विद्या पढ़ाई दिसों लिख रहे ने रणजीत सोलंकी, परमजीत कौर, विष्णु, राजवीर, रमन, जसू, जगवीर ते सारा परिवार लिख रहे ने सानू सिरसा तो। इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर ते सरगुन सादुल शहर तो लिख रहे ने। कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर, हरविंदर, राजा, कुलविंदर ते के एस मान। बहुत माण है जी सानू इन्हां ते। लिख रहे ने अगे ज़िला फजलका तो पोला सिंह सुहाग, डॉक्टर अमनजीत सिंह, सुखमंदर कौर, अमृतपाल कौर, पोतरी रितमन जोत, पोतरा गुरतेसवर ते सारा परिवार। पेंड मक्को खुरत तो लिख रहे ने सतनाम सिंह गिल, गुरिंदर गिल, गुरलीन ते पूरा गिल परिवार। ते इन्हां सारयां नूं सुना रहे हाँ जी कमाल खान दी आवाज़ विच। गीत है, तुसीं सुन रहे हो प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

नमस्कार। मीडिया वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स ते एफएम 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। शाम दे 4 बज रहे ने, साडी दूजी सभा लैके असी हाजिर हां ते आप सब दा स्वागत करदे हां। सभा दे शुरू विच लो आओ सुनो हुण तक दे मुख समाचार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों के दौरे के चौथे पड़ाव से आज नार्वे के ओस्लो पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम के दक्षिणी कोरिया के दौरे से रवाना। केरलम विच सीनियर कांग्रेसी नेता वी डी सीथन ने आज मुख्यमंत्री वजो सहु चुकी। पंजाब विच 26 मई नूं होने वाली नगर निगम चोणां लई 10,809 उम्मीदवारां ने नामजदगी पत्र दाखल कीते। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेड़ी जिले में एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत। लुधियाना पुलिस ने उत्तरी भारत के हुण तक के सब तो वड्डे साइबर धोखाधड़ी सिंडीकेट नाल संबंधित मामले में कुछ होर गिरफ्तारियां ते बरामदगियां कीतियां। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशीले पदार्थों ते गैर कानूनी हथियारों की तस्करी करने वाले मेड्यूल के एक मैंबर नू 7 आधुनिक पिस्तौलों ते 2 किलोग्राम तो वध हेरोइन समेत गिरफ्तार किया। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बीते कल महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया की जन्म शताब्दी समारोह दौरान नाभ्या विखे करवाए समागम में शामिल होए। मौसम विभाग वालों पंजाब ते हरियाणा विच कई थावां ते अज ते भलके 20 तों 23 मई तक जबरदस्त गर्मी दा येलो अलर्ट जारी। लोगों नूं अपने बचाव लई चौकस रहण दी अपील। आईपीएल क्रिकेट विच अज चेन्नई सुपर किंग्स दा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद नाल होवेगा। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 4:02 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਓ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗੀਤ।

तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मन वस्या लगे न दुखा। अकाल पुरख प्रभु प्यारा है, उस दे नाल स्नेह करन वालिया नू उस दे दिदार दी भुख हुंदी है, उस दे सच्चे नाम दी भुख हुंदी है। तां ते फिर वो कदे विसरे ही ना, ते ना ही उसका नाम ही कदे मन विचों विसरे। राग आसा विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी फरमाउंदे ने, सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचा नाए। सरवण करदे आ भाई समुंद सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचा नाए। इस शब्द का गायन कीता सी भाई समुंद सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। राग श्री राग विच उचारित शब्द विच साहिब फरमाउंदे ने कि उस प्रभु तो बिना मेरा जी सड़ बल जांदा है। आप जी अनेकां दृष्टांत दे के फरमाउंदे ने कि किते इना पदार्थां करके मैनू प्रभु दा नाम ही ना विसर जावे, किते प्रभु मैनू चेत्यों ही ना विसर जावे। इसे करके आप जी बारंबार फरमाउंदे ने मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे नाओ। सरवण करदे हां भाई गुरमेल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

ता मंदर उसरे, रत्नी ता हो है जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख पूला विसरे, तेरा चित ना आवे नाओ। आप जी सरवण कर रहे सो भाई गुरमेल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़या निर्मोलक छूट गई संसारी। आप जी सरवण का रहसो भाई बहादुर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: 47.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। हुण तो कुछ ही पलां विच यानी शाम 6 बजे साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गोरस्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।
1: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक्ट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में

तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष चार में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शाम 6:30 बजे सुनोगे देहाती प्रोग्राम। अज दे इस प्रोग्राम विच मशीना नाल झोने दी लवाई बारे डॉक्टर बिंदू मरोहा नाल कीती गलबात सुनाई जाएगी। इस तो अलावा पंजाबी लड़ीवार नाटक होया देस पराया दी 7वीं कड़ी अज सुनाई जाएगी। गीत संगीत होएगा कल दे प्रोग्राम ते मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन विच कपड़े पाउण तो पहला चेक नहीं कीता सी की?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके फाटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता आरबीआई दे ओम्बड्समैन नु शिकायत करो। आरबीआई कहंदा है जानकार बनो सचेत रहो।

0: हाँ जी सरपंच जी, देखो अपना एक नाटक है लड़ीवार, होया देस पराया।
1: होया देश पराया।
0: हाँ,
1: हाँ
0: यदि सत्तवी किश्त ये आपस साझी करते हैं।
1: सुनाओ जी फिर।
0: पेशे अवतार सिंह बिलिंग दे नावल ते आधारित लड़ीवार पंजाबी नाटक होया देस पराया दी सत्तवी कड़ी, रेडियो नाटक रूपांतर बखशिंदर।

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते नॉर्वे दे प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने ओस्लो विच वफद पद्धरी गलबात की। गलबात दौरान दोवां नेतावां ने दुवाले संबंधां दे समुच्चे पहलुआं की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री अपने पांच देशों के दौरे के आखिरी पड़ा च कल इटली के दो दिन दौरे पर रोम पहुंचणगे। सीनियर कांग्रसी नेता वी डी सतीशन ने अज केरलम के मुख्यमंत्री वजों सहु चुकी। उन्होंने भी होर मंत्रियों भी सहु चुकाई गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने नीट प्रीख्या पेपर लीक मामले में हुण तक 10 मुलजमान गिरफ्तार किया है। पंजाब समेत उत्तरी भारत जबरदस्त गर्मी की मार हेठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने ओस्लो विच सीमित ते वफद पद्धरी गलबात की है। दोवे नेता भारत नॉर्वे संबंधा एक ग्रीन रणनीतिक भाईवाली तक वधाउण लई सहमत होए ने। यह साफ सुथरी ऊर्जा, ब्लू अर्थव्यवस्था और हरित बदलाव के खेत्र में सहयोग वधाउण वाले एक महत्वपूर्ण मील पत्थर है। गलबात दौरान नेतावां ने दोवे संबंधा के समुचे पहलुआं की समीक्षा की। व्यापार ते निवेश, ब्लू इकोनमी, सर्कूलर अर्थव्यवस्था, नवियाउण योग ऊर्जा, सिक्ख्या, विज्ञान ते तकनोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, पुलाड ते आर्कटिक खेत्र समेत वख वख खेत्रां विच सहयोग नूं होर मजबूत करन ते सहमत होए। दोहां नेतावां ने भारत EFTA व्यापार ते आर्थिक भाईवाली समझौते तों पैदा होण वाले विशाल मौकियां दा भी जिक्र कीता।
1: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने पिछले साल नॉर्वे का दौरा करने का प्रोग्राम से, पर पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले कारण इस मुलतवी करना पड़ा। उन्होंने उस मुश्किल समय दौरान दहशतगर्दी विरुद्ध भारत के नाल मजबूती नाल खड़े होने लई नॉर्वे का धन्यवाद किया ते इसनूं सच्ची दोस्ती का प्रतीक दस्या।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: श्री मोदी ने उभर रही विश्व चुनौतियों का मुकाबला करने लिए विश्व संस्थाओं में सुधार की लोड़ पर भी जोर दिता। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्वे दहशतगर्दी के सारे रूपों और प्रगटावे को खत्म करने लिए दृढ़ता वचनबद्ध ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव में कल इटली के दो दिन दौरे पर रोम पहुंचणगे। यह दौरा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के सद्दे पर हो रहा है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी नाल दुवली गलबात करेंगे। वह इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला नाल भी गलबात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अज दोपहर बाद वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वह अज तो वियतनाम और दक्षणी कोरिया के दौरे ते ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने दोहां देशों नाल दवाले संबंधा नूं होर वधाउण की उम्मीद प्रगट की। उन्हां कहा कि मुख जोर रणनीतिक सहयोग वधाउण, रक्षा उद्योगक भाईवाली ते समुद्री सहयोग नूं मजबूत करना ते हिंद प्रशांत खेत्र विच शांति ते स्थिरता नूं उत्साहित करन ते होएगा। सीनियर कांग्रसी नेता वी डी सतीशन ने अज तिरुवनंतपुरम विच केरलम के मुख्यमंत्री वजो सहु चुकी। राज्यपाल रजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने UDF सरकार के भी नवे मंत्रियों भी सहु चुकई। नवी कैबिनेट 16 मैंबर पहली बार मंत्री बने ने। इन्हां विच कांग्रेस पार्टी के 11 ते इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री शामिल ने। नवी सरकार विच शामिल सीनियर नेतावां विच साबका सूबा कांग्रेस प्रधान रमेश जैनीथला, मौजूदा सूबा कांग्रेस प्रधान सन्नी जोसफ, के मुरलीधरन ते इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता PK कुनालीकुट्टी शामिल ने। सहु चुक समागम तो बाद नवी सरकार ने अपनी पहली मीटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वी डी सतीशन नूं केरलम के मुख्यमंत्री वजो सहु चुकण ते वधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार नवी सरकार

मुश्किल बड़ी नहीं होती, उसके एहसास से डर लगता है। क्या होगा, कैसे होगा, बस सोच कर डर लगता है। जब वक्त आएगा तो दो ही बातें होंगी, मिलेगी मंजिल या नाकामयाबी हासिल होगी। कुछ पाना है ज़िंदगी में तो टूटना तो ज़रूरी है, बिना गम के साए से हर खुशी अधूरी है। कुछ देंगे साथ कुछ छोड़ जाएंगे, तू रखना खुद को मजबूत, रास्ते चाहे कैसे भी आएंगे। पेश है मेरी चौथी कविता, सहारा दो ना। तुम्हारे बिन बात के नखरे आठों पहर उठाए हैं, हमारी छोटी छोटी ज़रूरतें तुम भी पूरी कर जाओ ना।

भी आएंगे चाहे कैसे भी आएंगे। पेश है मेरी चौथी कविता सहारा दोना। तुम्हारे बिन बात के नखरे आठों पहर उठाए हैं, तुम्हारे बिन बात के नखरे आठों पहर उठाए हैं, हमारी छोटी छोटी ज़रूरतें तुम भी पूरी कर जाओ ना। उंगली पकड़ कर तुम्हें चलना हमने सिखाया था, उंगली पकड़ कर तुम्हें चलना हमने सिखाया था, अब इस बुढ़ापे की लाठी तुम बन जाओ ना। समय ने ली करवट, तुम जवान हम बूढ़े हुए, हमारे ही बाग के फूल हो तुम, अब हमें भी छाया दे जाओ ना। बात बात पर तुम्हारा रूठना, बात बात पर तुम्हारा रूठना हमको बहुत भाता था, अब हमारे गुस्से पर हमें आंखें ना दिखाओ ना। बच्चे और बूढ़े एक समान, कभी कभी हो जाते नादान, हमसे जो भी भूल हो जाए उसे दिल पर ना लगाओ ना। हमारे ही बाग के फूल हो तुम, अब हमें भी छाया दे जाओ ना। पेश है मेरी पांचवी कविता अपने आप से पूछो। क्या उचित है क्या अनुचित अपने मन से पूछो। अहंकार मिटता कैसे है शमशान की राख से पूछो। क्यों असत्य से सत्य को ढका अपने अंतर मन से पूछो। वृक्षों का क्या महत्व जीवन में सूखे पत्तों की सरसराहट से पूछो। धन के पीछे छूट गए अपने, धन के पीछे छूट गए अपने, क्या पाया क्या खोया पूछो। शिक्षा है विस्तृत सिंधु सरीखी, सीखना क्या है ये खुद से पूछो, ये खुद से पूछो। पेश है मेरी अगली कविता तुम लड़की हो। घर से बाहर जब कदम रखा, घर से बाहर जब कदम रखा, हुआ कुछ आवाज़ों का आना जाना। बेटा तुम जा रही हो तो घर लौटकर जल्दी आना, अगर जाना है दूर तो किसी को साथ लेकर जाना। लड़कियां सुरक्षित नहीं, सितम ढाता है ज़माना। हमें फिक्र है तुम्हारी, ना भरना पड़े कोई हर्जाना। एक दायरे में ही तुम अपने सपने हैं सजाना। ज़रूरी नहीं कि पंखों को हथियारों से ही कटवाना, तलवार से तेज इन बातों ने ही तुम्हें है कीवी बनाना। इसी डर के साथ तुम्हें ज़िंदगी को है बिताना, नहीं उड़ सकती तुम अपने घर की लाज बचाना, अपने घर की लाज बचाना। पेश है मेरी अगली कविता ज़िंदगी का सफ़र। तुम मुझे चलना सीखते हुए देखो, तुम मुझे चलना सीखते हुए देखो, मैं तुम्हें व्हील चेयर पर देख रहा हूँ। तुम मुझे धुंधली आँखों से देखो, तुम मुझे धुंधली आँखों से देखो, मैं तुम्हें तेज़ रोशनी से देख रहा हूँ। तुम मेरे दूध के दांत देखो, तुम मेरे दूध के दांत देखो, मैं तुम्हें बिन दांतों के देख रहा हूँ। तुम सूरज उगता हुआ देखो, तुम सूरज उगता हुआ देखो, मैं ढलता सूरज देख रहा हूँ। तुम अपना बचपन मुझ में देखो, तुम अपना बचपन मुझ में देखो, मैं अपना बुढ़ापा तुझ में देख रहा हूँ। मन का शोर तरंगे बन उठता है, मन का शोर एक हलचल सी हो जाती है चारों ओर। इस अडंबर में कहीं खो सा जाता हूँ, क्या कैसे क्यों है ये, इन सब में फंस जाता हूँ। सब कुछ स्थिर होने के दावे से फिर अपनी इच्छा शक्ति को जगाता हूँ। ये तूफान भी तूफान है क्या, अपने मन को धीरे से समझाता हूँ। और ये कहकर फिर से एक बार शांत लहरों में समा जाता हूँ। पेश है मेरी आखिरी कविता समाज सेवक। मैं ऋणी हूँ उन समाज सेवकों का, जिन्होंने अपने कर्मों से दिशा बदल दी समाज की।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

आकाशवाणी जिलंधर से सुन रहे हो प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी वाकई हसीन है और जिंदगी को हमेशा हंस के मुस्कुरा के जीना चाहिए, क्योंकि हर दिन हसन नाल ते मुस्कुराहट नाल खास बन जाता है। कई बार कई वड्डी वड्डी गल्लां जिहड़ियां असी तमाम कोशिशों नाल नहीं कर पाते, एक छोटी जी प्यार भरी मुस्कुराहट उस काम नूं बना दिंदी है। इस करके सानूं हमेशा हसदे रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए और जिहड़े लोग सानूं दिन भर मिलते हैं उन्हां नूं भी कोशिश करनी चाहिए है कि हसांदे रहिए ते उन्हां दे चेहरे ते मुस्कान लियांदे रहिए। और ये सब कुछ उदों ही होएगा जदों साडी सोच जिहड़ी है चंगी होएगी, क्योंकि चंगी सोच एक बहुत वड्डी ताकत हुंदी है उस हर मुश्किल नूं दूर करन वास्ते जिहड़ी रस्ते विच साडे औकड़ां या रुकावटां आउंदियां ने। और रुकावटां नूं सानूं एड्डी वड्डा औकड़ दे तौर ते नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर रात तो बाद नवी सवेर तां आउंदी है ना। और जिहड़ी सवेर वो पहली किरण जिहड़ी हुंदी है अंधकार नूं दूर कर दिंदी है, और जिहड़े सपने असीं देखे उन्हां नूं पूरा करन दा मौका मिलदा है। और सानूं कदे भी अपने सपनियां नूं छड्डना नहीं चाहिए, सपने देखते रहना चाहिए, तां कि सपने देखांगे तां ही तो उन्हां नूं पूरे करांगे। फिर वो सपने जल्दी पूरे होण देरी ना पूरे होण सानूं सबर रखना चाहिए है, क्योंकि सबर करन वालियां लई हर राह आसान हो जाती है। हौसला रखना चाहिए है, मंजिल तां एक ना एक दिन जरूर ही मिलेगी। जिन्ना तुसी खुशियां वंडोगे उन्ना ही खुश रहोगे। इस करके खुशियां वंडन दा काम हमेशा जो भी तुहानू मिलदे हैं उन्हां नू खुश रखो। और उम्मीद ते मेहनत कदी नहीं छड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद ते मेहनत कदी भी व्यर्थ नहीं जाते, ये हमेशा सानू साडी मंजिल तक जरूर पहुंचाते हैं। ते दोस्तों प्रोग्राम जिंदगी हसीना नू अगे वधाउने हैं ते अगला गीत पेश है तुहाडे वास्ते फिल्म हीरो तो। इस गीत नू गाया है अनुराधा पौडवाल ते मनहर उदास ने।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: आकाशवाणी जलंधर ते सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। ते प्रोग्राम विच अगला गीत मेरी जंग फिल्म तो इस गीत नु गाया लता मंगेशकर ते नितिन मुकेश ने।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

आकाशवाणी जलंधर से सुन रहे हो प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। तो जी हाँ दोस्तों, जिंदगी नू हसीन बनाने लिए, खूबसूरत बनाने लिए सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपने देखांगे तो उन्नू पूरे करन दी चाह साडे विच उठेगी, और उस सपने जिहड़ा असी देखिया है उन्नू पूरा करन लई जी तोड़ मेहनत करो। अज तो ही मेहनत शुरू करो ताकि साडे ओह सपने साकार हो सकन। और सपने देखते हुए रस्ते विच रुकावटां या असी डिगदे हैं तो वह कोई गलत गल नहीं है, पर डिग के दोबारा ना उठना वह गलत गल है, क्योंकि जदों भी असी डिगदे हैं तो सानू वो रुकावट कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाती है, और सानू दोबारा उठ के दौड़ना चाहिए अपनी मंजिल वल। विश्वास रखना चाहिए अपने आप पर, क्योंकि जिथे विश्वास होंदा है उत्थे जित जरूर होंदी है, क्योंकि उस उपर वाले ने, उस रब ने हर एक इंसान दे विच कोई ना कोई खास गल जरूर दिती है, और वो खास गल साडे अंदर भी है। और सब तो वड्डी खास गल जो सारियां विच दिती गई है वह है एक मुस्कान। जी हाँ, वो मुस्कुराहट वो चीज है जो सब दे दिल जित लैंदी है। तो दोस्तों, प्रोग्राम जिंदगी हसीना नूं अगे वधाउने आ, ते अगला गीत तुहाडे लई अनाड़ी फिल्म तों। इस गीत नूं गाया है साधना सरगम ने।

साधना सरगम ते उदित नारायण दे गाए अनाड़ी फिल्म दे इस गीत दे नाल ही अज दा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है इत्थे खत्म करन दी दिओ इजाजत। आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। हुण तो कुछ ही पलां विच यानी रात 9:45 साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुनोगे समाचार संध्या, 9 बजे सुनोगे न्यूज़ एट 9 ते 9:15 सुनोगे स्पॉटलाइट।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया।

अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनास गोरस्टोर के

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनास गोरस्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत

0: रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक

जाते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। इनमें छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses.

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

तेरे हुस्न को पर्दे की जरूरत ही क्या है, तेरे हुस्न को पर्दे की जरूरत ही क्या है, कौन होश में रहता है तुझे देखने के बाद।

0: बाकी सब गंगा।
1: पंकज दास दी गाई इस गजल तो बाद गजलां दे इस प्रोग्राम विच अगली गजल चंदन दास दी आवाज च समात फरमाओ।

0: ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਮ ਸਾਨੀ ਦੀ ਗਾਈ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਤ 11:05 ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी

भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तेरे नाल दो कड़िया ने असाने हसके जी परचौना ओ प्यार दिया दो गल्ला करके वेला लईए तक नी चुप करके चढ़ जा मित्रां दा चलिया ट्रक नी।

चकला बाजार समाना तो सानू मैसेज भेजे ने पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू स्माइल और बहुत सारे साथी ने नाल हसमुख जिंदल, संजीव सुनीता बंटी जिंदल।

0: वाह जी वाह, कंठ क्लियर थी आवाज़ आज। एक सैड सॉन्ग सुनिए, उम्मीद करते हैं जी तो इस गीत का आनंद माने होएगा। प्रोग्राम जारी रखते हैं तो गलबात करते हैं जी प्रोग्राम दे अगले कॉलर के नाल, देखते हैं कौन ने किस जगह तो आए ने ते उन्होंने विचार सुनते हैं तो देखते हैं किस गीत की फरमाइश लैके हाजिर हुए ने। हैलो,
1: हाँ जी नमस्कार अमित जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने, किस जगह तो?
1: भूषण कटारिया मलोट तो बोल रहा सर।
0: जी जी कटारिया साहब, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम सुगात विच, की हाल चाल?
1: मेहरबानी जी।
0: ते दिने भी मौका मिलता सर प्रोग्राम सुनने का कि सिर्फ रात सुन पाते हो?
1: नहीं मैं रात में ज्यादा टाइम है।
0: जी जी जी, चलो बहुत खुशी हुई इतना गलबात करके।
1: माड़ी मोटी कर ली थी, दाल का बना ली थी।
0: जी जी जी, बहुत बहुत बहुत अच्छी गल है। आज केड़ा गीत सुनाओगे सारे नु?
1: जगमोहन कौर दा सुना दो,
0: कुंड विच नहीं लुकदे। ठीक है साहब,
1: सजना नैन कौर।
0: सजना नैन कौर है, बहुत पुराना गीत है, बड़ा मकबूल गीत है। थोड़े पसंद का गीत तो पहुंच गया जी। कॉल करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: इस गीत की फरमाइश सानू सुखदेव जी ने बस्ती शेख जलंधर तो की सी। उम्मीद करते हैं तुम इस गीत का पूरा पूरा आनंद माने होगा। प्रोग्राम जारी रखते हुए जी हूँ आप गलबात करेंगे अपने रब वर्गे स्रोता जिन्होंने लाइन मिलाई है जी 0181 3142 171। उन्होंने गलबात करते हैं, देखते हैं जी कि जगह तो कौन ने। हैलो
1: नमस्कार जी।
0: हाँ जी कौन बोल रहे हैं जी? हैलो
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन साहब किस जगह तो बोल रहे हैं?
1: राम प्रसाद बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट पिंड भगवान सर।
0: वाह जी राम प्रसाद जी, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत थोड़े अपने प्रोग्राम सुगात विच।
1: थैंक यू जी।
0: होर सुनाओ की कर रहे सी?
1: बस कारगी

चांदी राम शांति देवी ने गाया इस युगल की थी, फरमाए सानू राम प्रसाद जी ने, हुने हुने फोन राही की थी। उम्मीद करते हैं तुम भी इस गीत का पूरा पूरा आनंद माने होएगा। लो जी हुण शामिल करते हैं जी व्हाट्सएप मैसेजेस, ते आ सानू भेजा मैसेज अगले वाला पिंड पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ तो दिपेश शर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति ते शिवांश वर्मा कहते हैं कोई

0: Tiger Style.
1: प्रोग्राम दी अगली पेशकश दलजीत दोसांझ दा पंजाबी गीत।

0: प्रोग्राम पंजाबी मेरिट्स की थी। अगली पेशकश गिप्पी गिरेवाल ते शिप्रा गोयाल दा एक युगल गीत।
1: गबरू बजाउंदे ताड़ियां कुड़ी ताड़ी नाल पब चक्की दी।
0: इस तो बाद सुनांगे दिलजीत दोसांझ ते अमित त्रिवेदी दा एक युगल गीत।

आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखणे औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाए चलिए दुख, सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए। ये फरमान अकाल पुरख परमेश्वर दे नाम दी वड्याई बयान करता है। दरअसल गुरमुखां दा जीवन ही प्रभु दे नाम नू चेते रखना है। इसे करके प्रभु प्यारिआं नू सच्चे नाम दी भुख लगदी रहिंदी है। साहिब श्री गुरु रामदास जी अनुसार अकाल पुरख प्रभु दा नाम मानो काम तेन गऊ है जो उस अकाल पुरख प्रभु दे वस विच है। तां ते फिर उस प्रभु दा परा पूरबला नाम जपना चाहिदा है। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना। सरवण करदे आ भाई जगीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उज्जल हुई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई जगीर सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। जोगियां जतियां तपियां ने अनेका प्रकार नाल खोज करके वेख लई है। सिट्टा यही निकलदा है कि प्रभु दा नाम जपया ही मन नू तरवास मिलदा है, मन नू चैन आउंदा है। प्रभ जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजे सब ताको बिखम न जाई लैन। सरवण करदे हां भाई अनूप सिंह ते उनां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द है।

0: को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजह सब ताको, बिखम न जाई लैन। इस शब्द गायन कीता सी भाई अनूप सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आं इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जज सिंह।
1: तनासरी महला पंजवां, पूजा वर्त तिलक इशनाना, पुन दान बहुदैन, कहू न भीजै संयम स्वामी, बोलह मीठे बैन। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजै सब ताको, बिखम ना जाई लैन रहाओ। जाप ताप भ्रमण बसदा कर, उर्द ताप लै गैन, यह बेदनै पतियानो ठाकर, जोग जुगत कर जैन। अमृत नाम निर्मोल कहार जस, तिन पायो जिस किरपैन, साध संग रंग प्रभ पीटे, नानक सुख जन रैन। यह पवित्र पावन शब्द पंजवें पातशाह शहीदां दे सिरताज श्री गुरु अर्जन देव जी का उच्चारण किया होया तनासरी राग अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 674 उपर सुभायमान है। इस शब्द दियां केंद्रीय भाव वाली पंक्तियां इस प्रकार हैं। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजै सब ताको, बिखम न जाई लैन। जदों तो दुनिया बनी है, दुनिया के हरेक मनुख के मन की तमन्ना है कि मैनू रब परमात्मा जी के दर्शन हो जाए। रब जी नू लभण वास्ते आदकाल तो दुनिया के मनुखा ने अनेक तरह दियां पूजा, अनेक तरह के जप तप, अनेक तरह के भेख, अनेक तरह के शरीर नू कष्ट दिते, परंतु ना तो रब जी के दर्शन होए ते ना ही शरीरक संतुष्टि ते ना ही मन नू चैन भाव मानसिक शांति नहीं मिली। विचार गोचरे शब्द दियां आरंभक पंक्तियां हन। पूजा वर्त तिलक इशनाना, पुन दान बहुदैन, कहू ना पीजै संयम स्वामी, बोलै मीठे बैन। भगत कबीर जी दसदे हन कि पूजा दे नाम उपर लोग कई तरह के महंगे महंगे दान करते हैं। सब तो महंगी वस्तु सोना अपने भार के बराबर तोल के दान करते हैं, परंतु परमात्मा नूं जान नहीं सकते। कंचन स्यों पाइया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। शब्द दियां आरंभक पंक्तियां विच वी सतगुरु जी फरमाते हैं कि पूजा दे नाल नाल कई तरह के वर्त भी रखे जाते हैं। मत्थे ते तिलक लाए जाते हैं, वख वख तीर्थ स्थानां ते इशनान किए जाते हैं, दान किए जाते हैं। रब कोई खिडौना नहीं है। भगत कबीर जी फरमाते हैं, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। परमेश्वर नूं रजाउण वास्ते मिठे बोल भी बोले जाते हैं, भाव सुर वाले शब्द भी गाए जाते हैं, बहुत भांतां दे राग नाद गाए जाते हैं। जेकर मन दे विच प्यार नहीं तां वी परमात्मा जी रीझदे नहीं। सतगुरु रामदास जी फरमान करते हैं, कोई गावै रागी नादी बेदी, बहु भांत कर नहीं हर हर भीजै राम राजे। सतगुरु जी ने सानू सोझी बख्शी है कि इन्हां सारे कर्मकांडां नूं छड्ड के परमेश्वर दा नाम जपया जावे तां शरीरक दे सुख दे नाल नाल मानसिक शांति भी प्राप्त होवेगी। शब्द दियां अगलियां पंक्तियां में सतगुरु जी का फरमान है, जाप ताप परमन बसदा कर, उर्द ताप लै गैन, यह बिदनै पतियां नूं ठाकर, जोग जुगत कर जैन। सतगुरु जी होर समझाउणा करदे हन कि परमात्मा नूं लभण वास्ते उस दे दर्शन करन वास्ते दुनिया दे मनुखां ने बड़े प्रकार दियां खोजां कीतियां। जंगलां पहाड़ां कुंदरां ते वख वख धार्मिक स्थानां ते रब जी नूं लभण दा यतन कीता। कई भेखी साध संत भी यह दावा करदे हन कि असीं रब नूं लभ लिया है ते लुकाई नूं दिखा देवांगे, परंतु यह सब अडंबरी कर्म।

0: सतगुरु गुरु अर्जन देव जी का फुरमान है, सब कहते हैं पाया, पर तथ यह है जिस मेले सो भगता, कृपा ही काम आउंदी है, मनुखी यतन नहीं। परमात्मा साडियां ज्ञान इंद्रियां की पहुँच तो बहुत दूर है, उसनों सौखे तरीके नाल जाणिया नहीं जा सकता। इस करके कई बारी मनुखी मन बेचैन हो जाता है। इस करके सतगुरु जी समझाते हैं कि सारे कर्मकांड छड के परमेश्वर का नाम जपया जाए तो मन में चैन मिलेगा, सहज सुख ते शांति मिलेगी। इस तों अलावा अनेक तरह के जप तप, तीर्थ भ्रमण, धरती का चक्कर, शरीर में कष्ट देना, उल्टा लटका के तप करना, इस तरह करन नाल रब रिझदा नहीं, भावें किसी तरह के योग जुगतियां आदि कर ले जान। धन गुरु अर्जन देव जी का ही सोठ राग अंदर बहुत सोहना फरमान है, जिस विच दर्शाया गया है कि कई तरह के जो धार्मिक कर्मकांड लोग करते हैं उन्होंने जाम रस्ते विच ही लुट लेंदे हैं। साहब जी का फुरमान है, करम धर्म पाखंड जो दिसै तिन जमजा गाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटै। शब्द दियां अखीरलियां पंक्तियां विच सतगुरु जी फुरमान करते हैं, अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस कृपैन, साध संग रंग प्रभ भेटे नानक सुख जन रैन। सतगुरु अर्जन देव जी दसते हैं कि परमात्मा का जो अमृत रूपी नाम है इसनू खरीदया नहीं जा सकता, यह अमुल है, इसका कोई मुल नहीं पाया जा सकता। संसार दे कम्मा कारां विच मनुख इन्ना खचित हुंदा है कि परमात्मा दे नाम जपण वास्ते समा कढ़ना मुश्किल हो जाता है। सतगुरु जी फरमाते हैं कि ना मनुख ने कोई परमात्मा जी का जप किया ते ना ही कोई तप किया, जप तप तो बगैर जीवन अंदर चंगे गुण भी नहीं आ सकते। जप ते तप दा बेड़ा ही है जिस नाल असी संसार दे पवजल रूपी समुंदर तो पार हो सकते हाँ। सतगुरु जी का फरमान है, जप तप का बंद बेड़ला जित लंघै वहेला, उसनों ही परमात्मा जी का नाम मिलता है जिस उत्ते रब जी कृपालू होंदे हन। परमात्मा जी उस जीव उत्ते ही कृपालू होंदे हन जो साध संगत करता है, उस उत्ते ही परमात्मा का रंग चढ़ता है। जिस ते परमात्मा का नाम रंग चढ़ जाता है उसनों मानसिक ते शरीरक सुख मिलता है ते जिंदगी दे दिन रात उस दे सहावने हो जाते हैं। इस सारे शब्द तो सानू सिक्ख्या मिलती है कि सारे कर्मकांड छड़ के केवल परमात्मा का नाम जपना चाहिदा है। धन गुरु नानक देव जी का महान बाणी जपजी साहब अंदर फरमान है, जिन्नी नाम त्याया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल।
1: प्रभ जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजह सब ताको, बिखम न जाई लैन। इस शब्द की व्याख्या कर रहे सन ज्ञानी जज सिंह। जगत गुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी प्रभु दा नाम जपण वालियां तो कुर्बान जांदे ने। आप जी फरमाउंदे ने, हे मेहरबान प्रभु, मैं कुर्बान जाना हाँ, मैं सदके जांदा हाँ, मैं वारने जाना हाँ उन्हां तो जो तेरा नाम सिमरदे ने। हऊं कुर्बान है जाओ मेहरबाना, हऊं कुर्बान है जाओ, हऊं कुर्बान है जाओ तिना कै लैन जो तेरा नाओ। सरवण करदे हां भाई प्यारा सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है। ये ध्यान में रख के सुनिए,

उन्हें तुसी कुछ भगती गीत श्रवण कर रहे सी। आकाशवाणी डीटीएच की पंजाब प्रसारण सेवा का यह जलंधर केंद्र है।

0: मरण दुख जाए।
1: गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, हुती जो प्यास पियूस पीवन की, बंछत सिद को बेद मिलायो। पूरन पाओ मन ठोर बसो, रस बासन स्यो जो दहन दिस्तायो। गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम, जलन तीर विपास बनायो।

बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाओ ऊच समन्ना ठाकुर तेरो

जेकर सूत मने सत सूत कहो तो ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जेते दाने अनके जिया बाज ना को पहला पानी जियो है जे तरिया।